जब गंडी सतवट ए जनेऊ जी का है ना पांडे कत ना ए टुटे ना मल लगे ना ए हो जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौंकर मुल।

लख ठगियां पहना मिया रात दिन श्री नाल तग कपाहों कतिए बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए वे प्राणा छुट्टिए।

0: महला पहला
1: ये मोहब्बत का कर्म है कर्म पितरी दे
0: अगे बस आनी पितरी चोर करे वड़ी हद लाल के।

जेकर सूतक मनिए सबसे सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अनेके जिया बाज न कोए, पहला पानी जियो है जितारिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवेर सोए।

रखियों कोई न पिटियों जाए सुचा होए के जीविया लगा पढ़न सलोक को हथी जाई सटिया किसे लगा धोख अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लू

पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात तो दाई दाया खेले सगल जगत।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरम करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

साहब गरीब नवाज ने दुश्मन दे तीन वार रोकया। तीन वार जो हो गए गरीब नवाज कह लगे भी हुण सावधान हो जा, हुण मेरी वारी है। तेरे मन की तमन्ना किते दूजी रहिंदी ना रवे कोई, होर तू वार करना प्रहार करना कर सकदा, पर तेरिया तीन वारा सूरमे दियां बतीत हो गईयां ने, हुण मेरी वार है। साहब सचे पातशाह महाराज ने तीर गढ़ी तो फिर एक तीर चलाया ते हरी चंद दे घोड़े नूं वज्जा, घायल करदा होया घोड़ा डिग पिया। हरी चंद नूं दूजा तीर मार के साहब सचे पातशाह महाराज ने सदा दी नींदे सवा

0: जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पुरब कमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तंदे लाया। अलानिया मेरे भाईओ सबना ए भयान,
1: इथे
0: तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना जो मैं माना, गर्भ कीजे चंगा।

के दरवाजे के खड़ोता होया बिग बिग पे तक हसन भरी निगाह दे नाल वेख ले भगवान ने किया है दरबान ओदा नाम भी पूछ लेना सी दरबान ने किया नाम भी दस क्या नाम है

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय के रागों विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियों का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ये गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है और इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इसन गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असीं जो खो चुके हाँ, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है।

जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं। महाराज जी अपनी बाणी की पंक्ति आख देन कहते हैं,

मुद्दत हो गई है। इतनी न जानो कितनी मुद्दत, कहते इतना भी नहीं पता भी कितनी मुद्दत हो गई है। चलते खबर ना पायो, तू चल रहे हैं चल रहे हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो। पता नहीं कदों तो चल रहे हैं, की कुछ बनते आ रहे हैं। जुड़ जुड़ विछड़े शरीर अते आत्मा कई फॉर्म्स विच बार बार जुड़े हैं, मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, फिर विछड़े हैं। जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े, जीव जीव मुए मुए जीवे। बार बार कितनी दफा असी जी चुके हैं मर चुके हैं, जी चुके हैं मर चुके हैं। जीव जीव मुए मुए जीवे, केत्या के बाप केत्या के बेटे, केते गुर चेले हुए। पता नहीं कितने गुरु भी पहला धारण कीते, उन्होंने भी किते पहुंचाया नहीं। केत्या के बाप केत्या के बेटे, केते गुर चेले हुए। आगे पाछे गणत ना आवे, अगे पिछे दी कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, क्या जाती क्या हुण हुए। किन इसका भी पता नहीं है कि हुण की बनना है, हुण असा किधर जाना है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज आखते हैं कि मेरा जीवन सौभागा है, ओ बहुत ही सेलिब्रेशन दे नाल भरे हुए शब्द उचारते हैं। पाया लाल रतन मन पाया, अब मोहे जीवन पदवी पाई, सफल सफल भई सफल यात्रा। कहते मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। महाराज जी आप जी के जीवन की यात्रा सफल हो गई है, उसका की मतलब है? असी किवें समझिए कि जीवन की यात्रा की सफलताई किस चीज नू कहते हैं? जिंदगी दी जो असल सक्सेस है वो किसनू कहते हैं? गुरुदेव कृपा करके सानू दसो आप जी की जो सफलताई है उस दे विच आप जी ने की पाया है, की अकम्पलिश किया है। तो वो आखते हैं सुनो मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मेरा आना जाना जमना मरना रहे दा भाव खत्म हो गया है। डेथ एंड बर्थ दे साइकल दे विचों मैं बाहर हो गया। आवण जान रहे मिल साधा, सतगुरु नू मिलके साधु नू मिलके कहंदे हन मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई है, हुण कर्म भोगण दे वास्ते इस शरीर दे पिंजरे दे विच मैनू वापस नहीं आना पएगा। शरीर नू पिंजरा आख्या, पिंजरा आख्या, और असी सारे ही इस पिंजरे दी कैद दे विच हां जिसनू असी रैलिश कर रहे हैं, जिसनू असी इंजॉय कर रहे हैं। यह पिंजरा है अते असी इस दे विच कैद हां। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा हार्ड रह रहा है। अनेक तरह के दुख तसीहे तकलीफा मुश्किलातां दर्दां ए चल रहा है इस पिंजरे दे विच रह के। गुरु जी आखदे ने इंसान तू इस पिंजरे दे विचों निकल, तेरी रियल सक्सेस इस गल दे विच

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां,